0: जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 082-591-670 98-578-43-123 98-478-070
1: बाथ रोग एन्ड स्किन केयर सेन्टर प्राली ट्राफिक चोकदेखि 100 मिटर पश्चिम उकालो तर्फ घोराही दाङ।

0: 我家老
1: 板，俺的爸去，俺的爸去，
0: 俺子，你坐一下。
1: 老板，我的今早在那穿那把有难看，你走吧。
2: डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको सचेतनामूलक सन्देश सुन्नुहोस्।

कुरी छायाले जिन्दगी बिगर्यो अधर्मी पापी मायाले आज कुडिन सँग